0: বাতসালিয়া পোখারা ক্লিনিক, নিউ রোড, পোখারা। ফার্টিলিটি হেল্পলাইন 01-597-06-11।
1: ओ सुरेश, बिहान बिहान कता जान लागिस?
2: हेर्ने रमेश, भएको मोबाइल बिग्रियो, त्यसैले एउटा राम्रो खालको मोबाइल किन्नलाई पोखरातिर जान लाग्यो। आज मोबाइल किन्नलाई बजारतिर यताउता गर्दै दिन जाला होस् यार, आजको पास त उतै होला होस् यार।
1: अहिलेको समयमा पनि मोबाइल किन्नलाई यता

0: বাটসালিয়া পোখরা ক্লিনিক নিউ রোড পোখরা ফার্টিলিটি হোপ লাইন 01-597-06-11
1: बाजे देखि नातिसम्म पाइन मैले कुनै खोट त्यसैले भने जस्तो गहना किन्न जाऊ है रूपाको
2: टाइम चेक
3: यति बेला पूर्वाह्नको 11 बजेको छ
4: यस टाइम चेक का प्रायोजक रूपाको ज्योति सुनचाँदी दुकान महेन्द्र पुल पोखरा
5: किन्नुहोस् अब ढुक्कले सुनका गहना गए अब रसायन केडियम राख्ने समय

0: यति बेला मध्याह्नको 12 बजेको छ।
1: यस टाइम चेक का प्रायोजक रूपाको ज्योति सुनचाँदी दुकान महेन्द्र पुल पोखरा।
2: किन्नुस अब ढुक्कले सुनका गहना, गए अब रसायन केडियम राख्ने क्षमा।

बीमा को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लिने मौका आज बनो स्थानीय रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अभिकर्ता स्थानीय रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियों।

0: बाजेदेखि नातिसम्म पाइन मैले कुनै खोट, त्यसैले भने जस्तो गहना किन्न जाउँ है रूपाको।
1: टाइम चेक।
2: यति बेला दिउँसोको 2 बजेको छ।
3: यस टाइम चेक का प्रायोजक रूपाकोट ज्योति सुनचादी दुकान महेन्द्र पुल पोखरा।
4: किन्नुहोस् अब ढुक्कले सुनका गहना, गए अब रसायन केडियम राख्ने समय।

सुंघण बस सुंघण दो खालीपन ते सोना सोनापन है बड़ी बेचैनी ते कल्लापन है तन रूह कांप रही मौत कही आलाप रही कला सुखदा सा रुकदा प्राण मेरे खिचदा खिचदा कित गेम खत्म ना हो जावे मैं खुद से ही अब लुकता छिपता हाँ।

0: नासर्वे कति छ्याबा डिजाइन बे मारेका नाकी नानी खनि तोला
1: खनै बिवा नासर्वे रूपाकोट ज्योति सुनचाँदी दोकान महेन्द्र पुलारी तोला
0: ए नै स्याबा मार दोकान पो मोना नै प्रेसोलाई नै च्याबा चुरा रैया औठी हमेला झोका टस सिग्री हार तान चनै तो हो नि जग्गा मात्र आङी खैमा खैमा समस्या पर्दिर मार चुवल तुई बिस्यानारी बेल्ले छ्याबा कोपिम ओछे
1: हजुर किमे झोकोलाई नि छाबा छाबा छाबा मारे डिजाइन गहना चैदी मिशा वा चुबल तुई बिशा रूपाकोट ज्योति सुनचाँदी दुकान पोखरा महेन्द्र पुलारी खो जु दुकान पोखरा महेन्द्र पुलाई विशाल बजार गेट नलो धिताई पालिखी चोकै यावै क्यार मोहै
0: जग्गा मात्र आङी रूपाकोट ज्योति सुनचाँदी दोकाने घिस शाखा पोखरा महेन्द्र पुलारी अन्नपूर्ण सुपर मार्केट आडरे मुहै आसुम ल्यादो
1: समुताई रवा ता क्रिबा ज्याला जाति क्रिबा छतैरा नत खैमा बिलन चन्न यामो
0: तोय मिल तुई बिस्या रूपाकोट ज्योति सुनचाँदी दोकान महेन्द्रपुल पोखरा सम्पर्क 061580815 98565358 प्रोप्राइटर दशरथ सुनार
1: छतैरा त तान नि भिम्द
2: बाजेदेखि नातिसम्म पाइन मैले कुनै खोट त्यसैले भने जस्तो गहना किन्न जाउ है रूपाकोट।

ऑयल मेटल इंडस्ट्रीज को उत्कृष्ट उत्पादन जिंदल एसएस पाइप्स नेपाल नंबर वन ब्रांड। नक्कली देखि सावधान, जिंदल को लोकप्रियता ने गर्दा नक्कली जिंदल बजार में आएको हुनाले प्लास्टिक में मात्र नभई पाइप में पनि जिंदल लेखेको पाइप मात्र खरीद गर्नु होला। टिकाऊ र गुणस्तरीय काम जिंदल पाइप हो यसको नाम।